0: तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सोही इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आफ्नो लागि एक महीना फ्री इंटरनेट बायोनेट अब सबै कनेक्टेड।
1: स्वदेश तथा विदेश का 5-स्टार होटल रेस्टुरेंट तथा रिसोर्ट हरुमा 100% रोजगारी को सुवर्ण अवसर।
2: नेपाल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होटल तथा पर्यटन संबंधी तालिम में भर्ना खुल्यो।
1: राष्ट्रीय पर्यटन विकास तथा होटल व्यवस्थापन तालिम काठमाडौं को 50% सहयोग में मात्र 40 जना का लागि अब घोराही बजार में रहेको होटल सुपर लज में होटल तथा पर्यटन संबंधी तालिम संचालन हुँदैछ। सीट र समय एकदमै सीमित छ। आजै सम्पर्क गरी मौका को फायदा उठाउनुहोस्।
2: तालिम दिइने विषयहरु
1: स्पेशल कुक तालिम अंतर्गत इंडियन चाइनीज कंटिनेंटल र इटालियन पिज्जा स्पेशल सेफ तालिम जापानीज सुशी तालिम वेटर र टूरिस्ट गाइड आदि
2: हाम्रा विशेषताहरू।
1: स्वदेश तथा विदेश का 5-स्टार होटलहरूमा काम गर्नुभएका अनुभवी सेफ प्रशिक्षकबाट तालिम दिइने। एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल अथवा जब गर्न चाहेमा काठमाडौं पोखरा दाङ र नेपालगंज का विभिन्न स्तरीय होटलहरूमा पठाइनेछ। जापान दुबई र यूरोप का विभिन्न देशहरूमा जान चाहेमा विश्वासिलो मेन पावर को व्यवस्था भएको टाढाबाट आउनेहरूका लागि खाना र बस्नको व्यवस्था मिलाइनेछ। तालिम पश्चात अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ।
2: थप जानकारीका लागि होटल सुपर लज शहीद गेट उमेश मार्ग खोराही दाङ सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98410-1709 98410-1709।
1: आयोजक राष्ट्रीय पर्यटन विकास तथा होटल व्यवस्थापन तालिम प्राइवेट लिमिटेड काठमाडौं नेपाल।

राम राम सन्जेक 5 बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिकराम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। जिल्ला प्रहरी कार्यालयले साउन महिनामा करलक प्रगति विवरण सार्वजनिक राखल। जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङ अनुसार साउन महिनामा केल अदालतले दोषी ठहर होकन फरार लग 71 जना फरार प्रतिवादी पक्राउ परलबाट उस्तक प्रहरी साउन महिनामा 101 मुद्दा दर्ता हुइलकमा 35 मुद्दा फर्चित हुइलक 66 विचाराधीन रलको 98 जना पक्राउ करलक। दाङक प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डाक्टर हेम बहादुर केसी जानकारी दिरख। प्रहरीले साउन महिनामा केल जिल्लाका विभिन्न स्थानमा लुकाई छिपाई धरलक 90 नाल फरुवा बन्दुक बरामद करलक जना राखल। प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक तथ्याङ्क अनुसार 11 ग्राम 930 मिलिग्राम ब्राउन सुगर 35 केजी चरेस ओ 140 थान मनोद्रीपक ट्याब्लेट बरामद करलक। यसे संकलन 19 जनहन पक्राउ गरिकन आवश्यक अनुसन्धान हुइतिरलफे प्रहरी जना राखल। साउन महिनामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय ओ माधतक प्रहरी युनिट से अवैध नदी जन्य पदार्थको उत्खननमा संलग्न एक टिप्पर ओ 16 ट्रैक्टर कैकन 17 मालवाहक साधन नियन्त्रणमा लेलको कारवाही कैकन 4,61,334 रूपियाँ जरिवाना करलक जना राखल। उस्त अवैध रूपमा भन्सार छलिकनलक विभिन्न सामग्री ओ एकजना मासिक मनिया पक्राउ करलक। बा कलसी कलस उसे 30,95,750 रूपियाँ राजस्व संकलन करलक फे प्रहरी जना राखल। जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुसार साउन महिनामा हुइलक 23 सवारी दुर्घटनामा दाङमा 7 जनाको मृत्यु हिलबा कलसले 46 जना घाइते हुलबाट। जिल्लाका विभिन्न 7 प्रहरी युनिटले साउन महिनामा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्न 1,071 सवारी साधन से कार्यवाही करल बाकलसे 10,84,000 राजस्व संकलन हुइलक। दाङ प्रहरी प्रमुख दीपक श्रेष्ठ से जानकारी दिरखल। तुलसीपुरमा सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न उद्देश्य से राप्ती परोपकार संघ नेपाल से इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर हन 20 स्थान डिभाइडर हस्तान्तरण कैराखल। संस्थाका उपाध्यक्ष गोरख बहादुर ओलीको अध्यक्षता तथा इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डीएसपी होमबहादुर प्राजुलीको बरपौनामा आज आयोजित कार्यक्रममा डिभाइडर हस्तान्तरण करगिलक हो। डिभाइडर हस्तान्तरण कर्ती प्रमुख अतिथि डीएसपी प्राजुलीले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि प्रहरीको प्रयाससँग विभिन्न संघ संस्था यातायात व्यवसायी चालक मजदूर ओ आम नागरिक समेत महत्वपूर्ण भूमिका रहना बटवा रख। सड़कमा आवश्यक स्थानमा डिभाइडर थरबेर सवारी साधनको आगमन हन व्यवस्थित बनाएकला अब दुर्घटना नै जोखिम कम गर सहयोग पुग्न उहाँको कार्यालयहीन। कार्यक्रममा ट्राफिक प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख वीर वाहन रावल से सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक नियमका पालना व सड़क अनुशासन अन्त्य गर आवश्यक रलक बटवा रख। सवारी चालक से तीव्र गतिमा सवारी निचलिना लेन अनुशासन कायम गर्न ओ पैदल यात्रु हुकनक्से समेत सड़क प्रयोगकर्ता प्रयोग करबेर सवारी सावधानी अपनाई पर्ना हो कि कना दुर्घटना नगर दुर्घटनाको जोखिम उल्लेख्य रूपमा काम गर सिक्रिना बटवा रख। सड़क सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ना डिभाइडर प्रहरी हन हस्तान्तरण करगिलक उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा फेरि दुर्घटना न्यूनीकरण ओ जनचेतनामूलक गतिविधिमा सहकार्यकर्ती जैना उहाँ बटवा रख। कार्यक्रमको सहजीकरण ओद बहादुर भण्डारी करल रह। सरकारले बाढ़ी प्रभावित रसुवा नुवाकोट ओ धादिङका पालिकामा विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिराखल। आज पिछलक मन्त्री परिषदको आकस्मिक बैठकले तीन ठो जिल्लाका पालिकामा 3 महिनाका लागि संकटग्रस्त घोषणा गर्न निर्णय गरलक हो। संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्न यी आवश्यक काम गर्न निर्णय हो रहल। उस्तक मन्त्री परिषद बैठक से भोटे कोशी बाढ़ी से घाइते हुकनक निशुल्क उपचार गर्न हो रहल। घाइते हुकनक निशुल्क उपचार कला आवश्यक मन्त्रालय नेपाली सेना ओ सरकारी मन्त्रा अस्पताल से आवश्यक मिलाकन सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मन्त्री
सस्मित पोखरेल जानकारी दिरख बैठक से कहीं थी ओ बिचल्लिक पर्लहुकनक तत्काल उद्धार कैकन सुरक्षित ठाव सार गृह मंत्रालय हन निर्देशन दिराखल याकरकलाग नेपाली सेना ओ निजी क्षेत्र हेलीकप्टर प्रयोग करना निर्णय हो रहल बैठक से बाढ़ी से अवरूद्ध सड़क ओ खानेपानी का व्यवस्था मंत्रालय से मिलिना विद्युत आपूर्ति शुरू कर ऊर्जा मंत्रालय ओ विद्युत प्राधिकरण से मिलिना ओ घटना में पर्लक ज्यान गुमिनक परिवार हन कानून अनुसार क्षतिपूर्ति उपलब्ध करीना निर्णय फैकैराखल प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाहसे भोटेकोशी बाढ़ी से प्रभावित हुईलकनक उद्धार कार्य ओ राहत का गतिविधि हन प्रभावकारी एवं समन्वयात्मक ढंग से संबंधित निकाय हन इससे अगाड़ी छो निर्देशन दिराखल हुईठा आज थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह कालसंजयफे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटी अखसक खबर मसी समाचार कक्ष कसकू संग्रहणसंग मैशालिकराम चौधरी विदाहीटू रिरी मध्यपश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

0: सहकर्मा रेडियोमा उपस्थित
1: स्वास्थ्य क्षेत्रमा विश्वासिलो ठाउँ कोही कसैलाई रोग लागे कोखा अस्पताल जाऊ सर्जन फिजिसियन हार्ट जोड्ने नसा प्रसुति रेडियोलोजी एनेस्थेसिया बाल रोग थाइराइड प्रेसर सुगर छाती मुटु नाक कान घाँटी टाउको ग्यास्ट्रिक अल्सर फिजियोथेरापी दूरबीन बिरिबार अपरेसन लगायत स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण